मौजूद सामीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं जो सवाल शामिल करूंगा, सबसे पहला जो सवाल है वो ये कि शोहर के हुकूक अल्लाह सुबहानहु व तआला ने, इस्लाम ने क्या रखे हैं और शोहर के ऊपर क्या हुकूक हैं उसकी बीवी के, और फिर इसी तरीक़े से जो दूसरा सवाल, बीवी के ऊपर क्या हुकूक हैं शोहर के। ये दो सवाल हैं अपनी जगह पर, लेकिन बड़े ही अहम सवालात हैं। और इसी के साथ साथ एक ये भी सवाल है तीसरा, अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह इसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज जब हमारे घरों में औलाद पैदा होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके नाम हमें कैसे रखने चाहिए, ये भी एक सवाल मुझसे किया गया है। और साथ में आयतुल कुर्सी की कुछ फजीलत और इसकी बरकतें पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, ये भी सवाल इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूँगा।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये बात तो आप सब अच्छी तरह बाखूबी जानते हैं कि इस्लाम औलाद को माँ बाप की इताअत और फर्माबरदारी और ख़िदमत का ताकीद के साथ हुक्म देता है। तो वालदैन को भी अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो और उनकी ज़रूरियात का अपनी इस्तेताअत के मुताबिक ख्याल रखने और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का इस्लाम माँ बाप को भी हुक्म देता है। वालदैन को अपनी औलाद से अक्सर ये शिकायत रहती है कि वो उनकी बात नहीं मानते, उनके हुकूक अदा नहीं करते। क्या इसकी वजह सिर्फ़ औलाद की बेराह रवी है या इसमें वालदैन का भी कुछ कसूर है? मेरे ख़्याल से वालदैन को सिर्फ़ शिकवा नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें ये जायज़ा भी लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी औलाद के हुकूक पूरी तरह अदा किए या नहीं। तो आइए कुरान और हदीस की रोशनी में औलाद के हुकूक और उनके साथ बर्ताव के बारे में आज के प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगु करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई मकामात पर माँ बाप को औलाद के हुकूक का हुक्म दिया। चुनाचे 28 सिपारा में सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारं वकूदुहन नासु वल हिजारतु, तुम बचाओ अपने आप को और अपने अहलो आयाल को यानी घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुल ला यासूनल्लाहा मा अमरहुम, उस आग पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो बड़े तंद खू सख्त मिजाज हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते उस काम में मा अमरहुम जिसका उसने उन्हें हुक्म दिया, वयफ़अलून मा युमरून, और वो फरिश्ते वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क़ुरान करीम की इस आयत की रोशनी में हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करता रहे कि जहन्नम की आग बड़ी ही सख्त है, दुनिया की आग से बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया की आग तो लकड़ियों से जलती है लेकिन जहन्नम की आग इंसानों और पत्थरों से जलाई जाएगी, और उस पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे जो न किसी पर रहम करेंगे और न ही किसी की रियायत करेंगे बल्कि सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद होंगे।